सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज रविवार है, 1948 की आषाढ़ मास की पहली तिथि तदनुसार 21 जून 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, अहंकारी मन सब मेरे कार्यों को।

0: वादन स्वर है प्रेम कुमार सडाना का।
1: सभी मेरे कार्यों को देखें, महत्व दे, मेरी बातों को मूल्य दिया जाए। सब मेरी बात को समझते क्यों नहीं, सभी मुझे अवश्य जान जाएंगे। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। यह सोच, ये दिखावा, ये दमित अहंकार आज हम में से बहुतों पर हावी है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये दोहरा व्यक्तित्व पारदर्शिता से कोसों दूर है। इसी छद्मवेशी प्रवृत्ति के चलते वो प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान तथा सफलता की छाया को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रशंसा की भूख ही हमें आत्म प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में प्रदर्शन एक कला है, लेकिन स्वार्थवश उसे हित अहित की परवाह नहीं होती। परिश्रम के बिना प्रशंसा प्राप्ति की पिपासा रहती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु तमाम ऊटपटांग हथकंडे अपनाने लगते हैं। योग्यता के बिना प्रशंसा अधिक समय तक नहीं टिक सकती, बल्कि कुछ हालातों में तो सम्मान के स्थान पर अपयश ही हाथ लगता है। उसका समय, संकल्प और सामर्थ्य यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या ही अच्छा हो कि लोग प्रशंसा पाने के लिए लोक सेवा की ओर मुड़ा जाए। झूठे अहम का लबादा उतारकर विनम्रता को जीवन में स्थान दिया जाए। प्रशंसा की तृष्णा अनुचित नहीं, पर प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना के साथ उचित प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि प्रशंसा या पारितोषिक न भी मिले, पर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। प्रशंसनीय कार्य करें, न कि गले में ढोल बांधकर अपनी ही महिमा गाने लगें, और तब भी तृप्ति ना हो तो दूसरों की ढोल की पोल खोलते रहें। अपने को साफ सुथरा समझना और दूसरों को बुराइयों का पिटारा, ये परचिंतन पतन की जड़ है। जैसा चित्र मन में होगा वैसा ही चरित्र निर्मित होगा। हम स्वयं से बात करें कि क्या हमारा लक्ष्य यही है? इससे क्या प्राप्त होगा? खाली मन शैतान का घर होता है। तभी तो निठल्ला व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए उसके पास नवीनतम लेखा जोखा रहता है और सतत सक्रिय रहता है उनका सूचना तंत्र। दोनों आंखों और कानों के साथ मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाए, जिससे किसी का भंडा फोड़ करके सबकी वाहवाही लूट सकें। यही नहीं, विडंबना तो ये है कि जरूरी गैर जरूरी दृश्यों, क्रियाकलापों और दूसरों की दिनचर्या को कैमरे में कैद करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना आज सर चढ़कर बोल रहा है। ये प्रवृत्ति सर्वथा आत्मघाती है। ये दलील देना कि ये हमारा व्यवसाय ही है लोगों के गुण दोष जांचना और परखना, ये मात्र प्रदर्शन और उसका

नहीं जुटाया जा सकता। सबसे पहले अपने मन की इस शुद्ध प्रवृत्ति को समझकर स्वयं से वार्तालाप करना आज आवश्यक बन पड़ा है। मेरे मन, अब तो इधर उधर

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं। हाँ, किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं।

0: नहीं तो नहीं गा सकते है ना। तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना, रख लिया है। अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप सब लिख लीजिए। हाडू तिहवो हारु तिहवो
1: हारु तिहवो
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी
1: तो मुगिला
0: उद्द
1: अगला
0: जी
1: की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टंज है, आगे का स्टंज है, बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालिगे
1: हारो हक्की पालिगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
2: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
2: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा हाँ। वो भी सुना दो हाँ। लिख लेते हैं
2: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया
2: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना
2: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी
2: हाँ।
0: इसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे
2: हाँ?
0: हाँ। गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे।

कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना। अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

0: मालूम हो गया ना, इसके लिए जो स्वर आते हैं वे भी सुन लीजिए।
1: वानलोकन भुवनाक माम माम गम गरि करि, माम माम गम गरि करि।

दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं

0: अंतर तो पूरी तरह से याद हो गया। तो अब तीसरा अंतर सीखेंगे। मुक्त गगन नूर काला,
1: मुक्त गगन नूर काला,
0: नीजो शक्ति रेखे गे,
1: नीजो शक्ति रेखे गे।
0: अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक न गुवना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक कान शिक्षा पाठ FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंडल।
1: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ, वो भी।
2: बच्चों, संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: तो स्वागत है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज की तारीख है 21 जून और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बच्चों, योग भारत की एक ऐसी अनमोल देन है जिसे आज पूरी दुनिया अपनाती है। योग हमें स्वस्थ रखने, मन को शांत रखने और अपने काम पर अच्छी तरह ध्यान लगाने में मदद करता है। और बच्चों, वर्ष 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तभी से दुनिया के कई देशों में लोग इस दिन एक साथ योग करके स्वस्थ और खुशहाली का संदेश देते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है इस वर्ष की थीम क्या है? मैं बताती हूँ, इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए योग। बच्चों, और खास बात कि आज योग दिवस के अवसर पर कोलकाता में

0: विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया और सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश भी दिया। बच्चों, योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये शरीर, मन और विचारों के बीच संतुलन बनाने का एक सुंदर माध्यम है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हम स्वयं को अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और एकाग्र महसूस करते हैं। तो आइए योग दिवस पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने व्यस्त दिन में कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालेंगे और योग को अपनी अच्छी आदतों में शामिल करेंगे। और इसी के साथ अब हम बिना देरी किए अपने एक नन्ही से कलाकार के पास चलते हैं और जानेंगे कि उसका नाम क्या है और वो हमें क्या सुनाना चाहता है। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है और आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं?
1: Hello everyone, my name is Guru Singh. I am studying in class 3. My poem name is Robin. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks for summer. He sang with all his might. Robin sang sweetly. In the autumn days, there are food for everyone. Let all give peace in the cold and winter weather. Still hear his song, somebody must sing. Said Robin, our winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter. It will away always go. Thank you.
0: बच्चों, गुनीत सिंह के लिए हो जाए जोरदार तालियां। बच्चों, आजकल तो आप सभी की समर वेकेशन चल रही होंगी, तो हमें ये बताइए कि आपकी समर वेकेशन किस तरह से आप स्पेंड कर रहे हैं?
2: My name is Shavya and I am studying in class 4th. Today I am going to tell you about how I spent my vacation this time. This summer vacation was absolutely wonderful. Since the weather was very hot, I spent a lot of time playing fun indoor games and reading exciting story books at home. The best part of my holidays was visiting my hometown. I got to eat delicious ripe mangoes every day and enjoy yummy homemade ice cream. I also joined a drawing class where I learned how to paint beautiful landscapes. In the evenings, I went to park to ride my bicycle and play football and badminton with my friends. It was a perfect mix of relaxing,

0: कर सकता है, किसी को सिंगिंग का शौक है तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है, किसी को खेलने का शौक है, कोई सभी गेम सीख सकता है और खेल भी सकता है। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है?
1: नमस्ते, मेरा नाम अयान देवलाल है, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्यारी चिड़िया रानी। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, तुम हो इस उपवन की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती हो, मीठा मीठा गीत सुनाती हो, फुदक फुदक कर दाना चुगती, आसमान में पंख फैलाती, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना सुंदर घर बना, हौसला हमें तुम सिखलाती हो, सबका मन बहलाती हो। धन्यवाद।
0: शाबाश, छोटे से आयान ने छोटी सी चिड़िया की पोयम हम सभी को सुनाई है, तो आयान देवलाल के लिए जोरदार तालियां।
2: नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान देवलाल है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्यारा बचपन। हंसना और हंसाना सीखो, दुख में भी मुस्काना सीखो, खिल उठते हैं जैसे फूल, मिटा दो मन की सारी धूल, कागज की कश्ती बनाना, बारिश में फिर उसे बहाना, नन्ही आंखों में है सपने, जग में लगते सब हैं अपने, मेहनत से तुम कभी न डरना, आगे ही बस कदम बढ़ाना। धन्यवाद।
0: सच बात है बच्चों, उम्र का सबसे अच्छा पड़ाव बचपन होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती, बस मौज मस्ती ही होती है। तो आप सब भी अपने बचपन को खूब इंजॉय कीजिए और आयुष्मान देवलाल के लिए जोरदार तालियां भी बजाइए। अब एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची अपनी बारी का इंतजार कर रही है, तो उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सुनाना चाह रही है।
3: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आव्या, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल बुरी खादी, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाया करते। धन्यवाद।
0: देखा बच्चों, नन्ही सी आव्या ने कितनी प्यारी आवाज में अच्छी सी ये पोयम हम सभी को सुनाई है, तो आव्या के लिए जोरदार तालियां।
4: मेरा नाम है अनिष्का और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ, और आज आपके साथ में एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और इस कहानी का नाम है बुद्धि का बल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, वह रोज जानवरों को मार के खाता था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि अगर वह ऐसे ही जानवरों को खाता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। यह सोचकर वह शेर के पास गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वह रोज एक जानवर शेर के भोजन के तौर पर भेजेंगे। ऐसा करते करते एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। वह बहुत चतुर था, वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। शेर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसके देरी से आने का कारण पूछा। तब वह बताता है कि रास्ते में उसे दूसरा शेर मिला और वह कह रहा था कि वह सबसे ताकतवर है। शेर और गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मुझे उस शेर के पास ले चले। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और जैसे ही शेर ने अपनी परछाई कुएं में देखी, वह दूसरा शेर समझकर उसने छलांग मारी और वह कुएं में मर गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने छोटे खरगोश को धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ही हमारा बल है। धन्यवाद।
0: देखा बच्चों, अनिष्का ने कितने आत्मविश्वास के साथ हमें प्रेरक कहानी सुनाई, तो हम भी भला पीछे कहाँ रहेंगे। हम भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक प्रेरक कहानी, तो आइए श्रीमती साधना शुक्ला से सुनते हैं बाल कहानी। कहानी का नाम है जंगल की सैर में योग का महत्व।
5: प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम एक कहानी सुनते हैं, इस कहानी का नाम है जंगल की सैर में योग का महत्व। यह कहानी है योग के अभ्यास के

0: द्वारा स्वयं के बचाव की। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, उसी तरह से गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। सभी मित्र बच्चों ने मिलकर कार्यक्रम बनाया कि हम पिकनिक पर चलते हैं। सभी मित्रों ने अपने माता पिता से अनुरोध किया कि इस बार हमारा जंगल सफारी में जाने का मन है। जैसे तैसे सभी मान गए। माता पिता ने उन्हें जंगल सफारी की जीप तक छोड़ा। छात्रों तथा मित्रों की संख्या थी 12-13। वह थे अर्णव, अक्षय, अश्विन, आरुष, शिवांश, शिवाय, आर्णा, त्रिशाना, नव्या, निकिता, पृथ्वी, भोला। इन सभी बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि हम अपने मित्रों के साथ अकेले जंगल में जाना चाहते हैं। कुछ मित्रों के माता पिता आए हुए थे साथ में कि हम भी साथ में जाएंगे, लेकिन बच्चों की जिद के सामने विवश होना पड़ा। वह अकेले ही मित्रों के साथ जंगल में चले गए। इस तरह बच्चों का जंगल में सफारी का शौक भी हो गया, क्योंकि उसमें पर्वतारोहण तो था ही, ताल तलैया, जंगल और जंगली जानवर सब होना तो स्वाभाविक ही था। आखिर वह चल पड़े मनोरंजन के लक्ष्य की ओर। थोड़ी दूर एक पहाड़ी थी, जिसे देखकर शैला प्रसन्न हो गई और समृद्धि भी उत्सुक हो उठी। सभी बच्चों ने गार्ड से पहाड़ी की ओर जाने का अनुरोध किया। पहाड़ी दुर्गम नहीं थी, इसलिए गार्ड भी शीघ्र तैयार हो गया। अब बच्चों में होड़ लग गई कि शीघ्रता से इस पर्वत पर कौन चढ़ेगा। उन बच्चों में से जिन बच्चों ने वज्रासन तथा मार्जरी आसन का अभ्यास किया हुआ था, वह तो शीघ्रता से पर्वत पर चढ़े जा रहे थे। उनकी सांस भी नहीं फूल रही थी, क्योंकि वह अनुलोम विलोम का अभ्यास भी तो करते थे तथा वज्रासन करने के कारण शीघ्र ही संतुलन भी बना पा रहे थे, एवं मार्जरी आसन के कारण उनका शरीर लचीला बना हुआ था। अब बारी थी नीचे उतरकर वन में घूमने की, जहाँ ताल तलैया, जंगली जानवर सभी से सामना हो सकता था। यही तो जंगल का रोमांच भी था। तभी एक बड़ा सा मैदान दिखाई दिया और युवराज ने बोला, चलो यहाँ कुछ समय खेला जाए। वान्या तथा त्रिशाना ने भी सहमति जताई। तब हमारे गार्ड ने कहा, चलो इतने तुम यहाँ कुछ खेल रहे हो, मैं भोजन करके आ जाता हूँ, लेकिन याद रहे कहीं इधर उधर मत जाना। कुछ बच्चों का मन तो जंगल की ओर ही जाने का था, उनका मन तो खेल में था ही नहीं, इसलिए वह जिद करने लगे, अरे आसपास ही चलते हैं, क्या हुआ, दूर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे सब बच्चों के मन में यही आ गया कि हम आसपास जंगल में चलते हैं। वह चलते रहे, चलते रहे, अरे यहाँ तो केवल चिड़िया और बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। जंगल में कुछ जंगली जानवर जैसे बड़े बड़े जानवर, शेर इत्यादि तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए बच्चे चलते जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा, अरे वह देखो, सरसराहट की जनाई सुनाई दे रही है। झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज ये कैसी आ रही है। सभी बच्चे सतर्क हो गए, अरे ये तो शेर का बच्चा है। इसे देखकर ऐसा लगा लॉयन किंग पिक्चर का सिम्बा ही चला रहा है। लेकिन कुछ आलसी बच्चे सोचने लगे, अब क्या किया जाए, क्योंकि हम तो थक गए हैं। वह व्यायाम के भी बहुत आदी नहीं थे, क्योंकि कम ही करते थे, आलसी जो ठहरे और शीघ्र ही थक भी जा रहे थे। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वह तो भूले हुए थे। तभी कुछ बच्चों ने उन्हें कहा कि यदि तुम इधर उधर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते हो, तो जब गुरुजी हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराते हैं, तब अंत में शवासन कराते हैं, तो तुम वही अभ्यास को कर सकते हो, उसी आसन का प्रयोग करते हुए लेट जाओ। बाकी बच्चे जो इधर उधर पेड़ों पर चढ़े हुए थे, उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास से अपने सांसों की गति को शून्य सा बना लिया, जिससे शेर जान ही नहीं पाया कि कोई व्यक्ति पेड़ पर भी हो सकता है। और नीचे लेटे हुए जो बच्चे थे, उनकी तो हालत देखने योग्य थी। परंतु करते क्या, पेड़ पर चढ़े बच्चों ने लेटे हुए बच्चों को सख्ती के साथ कह दिया था कि जब हम कहें तभी हिलना। तभी शेर मुड़ता हुआ आया और उनको सूंघा और धीरे धीरे उनको देखकर वापस चला गया। अरे ये तो वापस जा रहा है, उसको मुड़ता देख करके निकिता ने कहा। अरे ये तो आनंद आ गया, शेर वापस चला गया। क्योंकि शेर मृत व्यक्तियों को नहीं खाता और शवासन के कारण उन्हें लगा कि बच्चे तो जीवित ही नहीं हैं। यही प्रमाण था कि शेर दूर जा रहा था। पेड़ पर चढ़े बच्चों ने धीरे से संकेत किया, खतरा अब टल गया है। अब बच्चे उत्सुक हो गए और खड़े हो गए, सभी स्थानों को देखने के लिए तैयार भी हो गए। तभी दो तीन बच्चे प्यास से व्याकुल हो गए, क्योंकि जो पानी वे साथ लाए थे वह तो समाप्त हो गया था। वह किसी प्रकार से जल ग्रहण करना चाह रहे थे। तभी एक बच्चा जो पेड़ पर सबसे ऊपर की ओर चढ़ा हुआ था, क्योंकि ताड़ासन के कारण उसकी लंबाई कुछ अच्छी तरह से बढ़ी हुई थी, यानी अधिक ही लंबा था, उसने बताया, मैं जानता हूँ यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है जो मुझे दिखाई दे रहा था, वहीं चलते हैं। सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। तभी शिवांश चिल्लाया, देखो तालाब पर मुझे तो कुछ और भी दिखाई दे रहा है, तालाब के उस पार देखो। यह सुनकर सभी बच्चों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने शीघ्र ही वहां जाकर देखा तो पाया कि एक हिरण है जो गर्मी से व्याकुल होकर के पानी पीने आया था। तब बच्चों को लग रहा था कि चलो जंगल में आना सफल हो गया। बच्चे हिरण को देख ही रहे थे, तभी एक हाथी भी दिखाई दिया, वह भी तालाब की ओर आ रहा था। बच्चों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। हाथी आया, उसने पानी पिया और अपनी सूंड से पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर डालने के लिए तैयार ही हो रहा था और स्वयं तो नहा ही रहा था। तभी भोला सोच ही रहा था कि हाथी को तो केला पसंद आता है, क्या मैं इसको केला खिला दूं? लेकिन यह क्या, उन्होंने देखा धीरे धीरे शेर भी आ रहा है। अब तो उनका भय के कारण घबराहट भी होने लगी। लेकिन शेर जैसे ही हिरण के पास पहुंचने ही वाला था, हिरण को एहसास हो गया और वह पानी पीना छोड़कर चौकड़ी भरता हुआ भाग गया। शेर भी उसके पीछे पीछे जाने लगा तथा हाथी भी उसी ओर चला गया। यह दृश्य देखकर बहुत ही रोमांच उत्पन्न हो रहा था, हम सभी बहुत प्रसन्न भी हो रहे थे। तभी गाइड का नाराजगी भरा स्वर सुनाई दिया, जो हमें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा था। पहले तो उसने इस प्रकार से चले आने के लिए नाराजगी दिखाई, फिर घूमने का समय समाप्त होने की बात कहकर शाम होने के कारण हमें जीप में बैठा लिया। हम खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। जंगल से बाहर आकर कुछ माता पिता जो साथ आए हुए थे वह भी मिल गए। तो बच्चों, कैसी लगी यह योग के अभ्यास से जुड़ी जंगल की कहानी? क्या आपने भी कभी जंगल में सैर की है? इससे हमने क्या सीखा? प्यारे बच्चों, इससे हमने सीखा कि योग केवल व्यायाम ही नहीं, स्वयं के लिए सुरक्षा कवच भी है, जो मुसीबत के समय हमारी प्राण रक्षा कर सकता है तथा स्वस्थ तो रखता ही है। इसलिए योग करो, निरोग रहो, करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।
1: बच्चों, अभी हम श्रीमती साधना शुक्ला से सुन रहे थे ये बाल कहानी। कहानी का नाम था जंगल की सैर में योग का महत्व। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो अब बारी है बच्चों को बाल गीत सुनाने की। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं एक सुंदर से बाल गीत की ओर।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: बच्चों, आज का दिन तो खास है ही, क्योंकि एक तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और दूसरी बात आपको पता है कि आज फादर्स डे भी है। ये दिन हमारे पापा को प्यार, सम्मान और धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है, और आज हम एक बहुत ही प्यारी बात करने वाले हैं। जी हाँ, पापा को थैंक यू कहना है। बच्चों, हम अपनी मम्मी को तो अक्सर थैंक यू और आई लव यू कह देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पापा को आखिरी बार थैंक यू कब कहा था? पापा शायद अपने प्यार को ज्यादा शब्दों में नहीं बताते, लेकिन वो हमारी खुशी के लिए हर दिन बहुत मेहनत करते हैं। वो हमें स्कूल पहुंचाते हैं, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, हमें नई नई बातें सिखाते हैं, और हर मुश्किल समय में हमारा साथ भी देते हैं। हम मानते हैं बच्चों, कभी कभी पापा डांट भी देते हैं, लेकिन उनकी डांट के पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। वो चाहते हैं हम अच्छे इंसान बने और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों, फादर्स डे हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने पापा के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। इसके लिए किसी बड़े उपहार की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा थैंक यू पापा, एक मुस्कान या एक प्यारा सा कार्ड भी उनके चेहरे पर खुशी ला सकता है। तो आज आप सभी अपने पापा से मिलें तो उन्हें जरूर कहिए, थैंक यू पापा, आप मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यकीन मानिए बच्चों, आपके ये छोटे से शब्द उनके लिए दुनिया का सबसे सुंदर उपहार बन सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खूबसूरत संदेश के साथ ही अब हम चलते हैं एक नन्ही सी बच्ची के पास और जानेंगे कि वो हमें क्या सुनाना चाहती है।
5: माय नेम इज आयरा काला, आई स्टडी इन क्लास 2KG। मैं आपको एक पोएम सुनाने वाली हूँ, तितली रानी तितली रानी तितली रानी तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ के जाते हैं।
4: आयरा काला ने हमें तितली की प्यारी सी पोयम सुनाई, तो आयरा काला के लिए हो जाएं जोरदार तालियां।
6: हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानवी डंगवाल, आई स्टडी इन क्लास 1, प्लीज एंजॉय माय पोयम। Oh look at the moon, she is shining up there, oh mother, she looks like a lamp in the air, last week she was smaller.

0: तो देखा बच्चों आपने, सानवी डंगवाल ने कितने जोश के साथ सभी को हेलो कहा है। सानवी के लिए हो जाए जोरदार तालियां।
1: नमस्कार, मेरा नाम है राज्य डंगवाल। मैं कहना चाहती हूँ ट्रैफिक सिग्नल।

0: आराध्या डंगवाल ने भी हमें बहुत प्यारी आवाज में ट्रैफिक लाइट के नियम सिखाए, तो हम सभी ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे।
1: A student of class 6th present before you a story titled Ginny Learns a Lesson. Ginny was an 8-year-old girl who loved to talk about herself. She would do so for hours without listening to what her friends had to say. Slowly, Ginny's friends grew tired of listening to her talk about her dress, shoes, hair, doll and all the other things she spoke about. They started avoiding her. After a few days, Ginny noticed that no one was willing to talk to her. She realized that maybe she had become too full of herself. The next day, she sat to her old friend Rachel and asked, "How are you doing?" Then Ginny patiently listened to everything that Rachel had to say. Rachel was happy that for once Ginny didn't interrupt to talk about herself. Slowly, everyone started noticing the change in Ginny's behavior. She got her friends back. Moral: a bad listener is a bad friend. Thank you.
0: बच्चों, आकांश लखेड़ा के लिए हो जाए जोरदार तालियां। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कार्यक्रम को आपने खूब एंजॉय किया होगा, और जो बच्चे हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इस बार चूक गए हैं, उन्हें डरने की, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपका इंतजार करते हैं हर शनिवार को हमारे स्टूडियो में। आपको सिर्फ करना ये है, सैटरडे को यानी कि शनिवार को ठीक 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे स्टूडियो आना होगा। यहाँ हम आप सभी बच्चों की पोयम की, कहानियों की और इंस्ट्रूमेंटल गीतों का भी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जिसका प्रसारण हम अगले दिन यानी कि रविवार को कार्यक्रम बाल मंडल पर ठीक 12:30 बजे करते हैं। तो बाल मंडल कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। इसी के साथ अपनी दीदी कीर्ति जखमोला को अब इजाजत दीजिए। जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ। दीदी
4: बच्चों, संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम बालमंडल FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि दोपहर 2:30 पर फिल्म संगीत के अंतर्गत सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा। गाने, नए तराने आप सुन पाएंगे ठीक 3 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज शाम 4:02 पर सुनिएगा रवि कुमार का गिटार वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग किरवानी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
4: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 1:05 का समय, श्रोताओं आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में बड़ी संख्या में योग साधकों के संग योगाभ्यास कर योग को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया और चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योगेश धस्माना, और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन भी बताया।
4: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
5: और आज कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने भी योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं तथा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनबसा में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शारदा नदी तट पर योग और आध्यात्मिक साधना को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। इस बीच राजधानी देहरादून में विश्व योग दिवस पर देहरादून में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिभागियों के साथ योग कर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया तथा नियमित योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उनियाल ने कहा कि योग आज केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।
6: भूमि से निकले हुए इस योग को आज पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। ये बात का प्रतीक भी है कि भारत विश्व कल्याण की जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप भारत पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है, चाहता है पूरा विश्व स्वस्थ रहे। जिस तरह योग हमारी विरासत है, योग कोई आविष्कार नहीं है, ये हमारी विरासत है और सदियों से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा उनकी कृति है जो कृति आज स्वस्थ भारत के लिए परिकल्पना 2047 उस कल्पना उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए इस देश के 145 करोड़ लोगों स्वस्थ मंचित के साथ स्वस्थ शरीर के साथ वो सभी लोग इस स्वस्थ भारत विकसित भारत की यात्रा से सहयात्री बने, सहभागी बने और ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के अंदर अपना प्रचार कर रहा है। मैं समझता हूँ इसमें योग का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा।
5: स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकाले तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है और बेहतर जीवन शैली अपनाई जा सकती है।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
5: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
8: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी।
5: इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 22,00,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे। राज्य में भी पुनर्परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए नो रिस्क रणनीति अपनाई है। राज्य में 53 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 अभ्यर्थी कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा देंगे। राजधानी देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित MDDA के सिटी फॉरेस्ट पार्क को और अधिक आकर्षक एवं जन सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में कदम तेज हो गए हैं। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित इस आधुनिक पार्क का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों से सीधे संवाद कर जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पार्क में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि पार्क आने वाले लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम विकसित किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में बड़ी संख्या में योग साधकों के संग योगाभ्यास कर योग को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया। और चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 1:15 का समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में और अब वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए, कार्यक्रम में ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जतिन ललित का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। और लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और सुरेश वाडकर को, मजरूह के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत और फिल्म का नाम है दिल आशना है।

आनंद मिलित के संगीत से सजाई गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम दिल आशना है। लीजिए एक बार और सुनवाते हैं आपको आनंद मिलित के संगीत से सजा, समीर की शब्द रचना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का स्वर। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।

मुझको छेड़ो, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के युगल सुर में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम बुलंदी। आनंद बख्शी के बोल और विजू शाह का संगीत। लीजिए अब सुनिए अमित भट्टाचार्य और अनुषा मणि को। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है, विशाल शेखर का संगीत है और फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस।

आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों का गाया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक और गीत आपको सुनवाते हैं डुप्लीकेट फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, कुमार शानू के साथ, जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य के युगल स्वर में, समीर के बोल, नदीम शवन का संगीत, और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम में, जिसका नाम है सैनिकों के लिए। यूं तो भारतीय सैनिकों की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति संपूर्ण विश्व में विख्यात है, लेकिन आज हम जिस सैनिक की बात आपसे साझा कर रहे हैं, उनके अद्भुत साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वीर सैनिक मेजर पद्मपाणि आचार्य की।

श्रोताओं, मेजर पद्मपाणि का जन्म 21 जून 1969 को हुआ था। मूल रूप से वो ओडिशा के रहने वाले थे, लेकिन बाद में उनका परिवार हैदराबाद में बस गया। उनके पिता विंग कमांडर जगन्नाथ आचार्य भारतीय वायुसेना के एक सम्मानित अधिकारी थे। उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने सेना में जाने की बात सोची। 1993 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए मद्रास से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और राजपुताना राइफल की 2 बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे आज के वीर सैनिक मेजर पद्मपाणि आचार्य के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए ये गीत।

श्रोताओं, आपको याद है ना, साल 1999 का वो दौर जब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन ने घुसपैठ की और भारत की सीमाओं को चुनौती दी। 28 जून 1999 की उस रात को मेजर पद्मपाणि आचार्य को अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन की महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा करने का दायित्व मिला। कड़ाके की ठंड और हर कदम पर था मौत का खतरा, लेकिन मेजर पद्मपाणि पीछे हटने को तैयार न थे।

मेजर पद्मपाणि ने सैनिकों का नेतृत्व सबसे आगे रहकर किया। लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। फिर वो क्षण भी आया जब उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर लिया। मिशन तो सफल रहा, लेकिन हमने अपना अनमोल रत्न खो दिया। मेजर पद्मपाणि आचार्य देश हित में अपना सर्वस्व बलिदान कर चुके थे। श्रोतो, मेजर पद्मपाणि आचार्य न केवल एक बहादुर सैनिक थे, बल्कि एक संस्कारी पुत्र और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी भी थे। कहा जाता है कि कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और कहा कि सैनिक के जीवन में जोखिम तो इस पेशे का हिस्सा है, लेकिन यदि वो जोखिम देश की रक्षा के लिए हो तो इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। उनकी पत्नी जो इस वक्त गर्भवती थी, उनके लिए भी उन्होंने लिखा कि उन्हें हर दिन महाभारत की कहानियां सुनाई जाए, ताकि जन्म लेने वाला उनका बच्चा पहले से ही अच्छे संस्कार और वीरता के गुण से परिपूर्ण हो। उनकी शहादत के कुछ समय बाद ही उनकी पुत्री अपराजिता का जन्म हुआ।

मेजर पद्मपाणि आचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटे। आज मेजर पद्मपाणि आचार्य की जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब भारती को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम है गाने नए तराने।

अजय अतुल की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अजय अतुल का संगीत। फिल्म का नाम है धड़क। लीजिए अब सुनिए कुमार शानू और साधना सरगम का युगल स्वर, वरुण ग्रोवर के बोल, अनु मलिक का संगीत, और फिल्म का नाम है दम लगा के हईशा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने। आइए अब सुनते हैं जॉनिता गांधी और अमित मिश्रा के युगल स्वर में कुमार का लिखा गीत, प्रीतम का संगीत और फिल्म का नाम डिशोम।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म का नाम भुज, शब्द रचना वायु की और संगीत तनिष्क बागची का। आइए एक बार फिर से श्रेया घोषाल का स्वर जावेद अली के साथ, फिल्म का नाम है चल पिक्चर बनाते हैं, सीमा सैनी के बोल और गौरव डागुनकर का संगीत।

चल पिक्चर बनाते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और जावेद अली के युगल सर में। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। शब्द रचना एम तुराज की और संगीत संजय लीला भंसाली का।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

श्रोताओं, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने। ज्योति नूरन की आवाज में आपने ये गीत सुना था फिल्म फिरंगी से। डॉक्टर देवेंद्र की शब्द रचना को संगीत से सजाया जतिंदर शाह ने। आइए एक बार और ले चलते हैं आपको गाने नए तराने के इस नए गाने की ओर।

कमीने इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। लीजिए अब सुनिए नूरन सिस्टर का गाया फिल्म हाईवे का ये गीत।

केदारनाथ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के युगल स्वर में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया फिल्म से टाइटल सॉन्ग, नीरज श्रीधर की आवाज़ में, शब्द रचना समीर की, संगीत प्रीतम का।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: जी हाँ श्रोताओं, हर जगह हर पल आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में। स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने और फिल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश।

0: सुनिधि चौहान और साथियों के गाए फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, गाने नए तराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में साय के 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योगेश धस्माना से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में बड़ी संख्या में योग साधकों, एसएसबी के जवानों, छात्रों, युवाओं, मातृशक्ति व वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। चंपावत में जिला न्यायालय परिसर में योग एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राजधानी देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी कुंभ मेला 2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन को लेकर हरिद्वार में शासन प्रशासन और संत समाज के बीच लगातार संवाद जारी है। पिथौरागढ़ जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत सीमांत क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को मुर्गियों और बकरियों की आपूर्ति, 2,25,000 से अधिक रुपए का व्यापार किया। हरिद्वार में सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न नगर निकायों और विकासखंडों में जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए और कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 4:02 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे रवि कुमार का गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संतोष कुमार।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रवि कुमार का गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग किरवानी। आपके साथ तबले पर संगतकर्ता कलाकार थे संतोष कुमार। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार।

गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। भारती आनंद की ओर से श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। एक कलाकार के अंतर्गत आज के कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्मकार जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ समाज के अहम सवालों को भी बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों के माध्यम से उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुभवी, संवेदनशील और सशक्त निर्देशक अनुभव सिन्हा की, जिनकी फिल्मों ने समाज के लिए कई प्रश्न चिन्ह छोड़ दिए। आइए आपको उन्हीं के निर्देशन में फिल्म तुम बिन का ये खूबसूरत गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, और यही बात अनुभव सिन्हा के इस फिल्मी दुनिया के सफ़र पर भी लागू हुई। संघर्ष करते हुए उन्होंने टेलीविज़न और विज्ञापन की दुनिया में काम किया, और इसी दौरान कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया। यहीं से उन्होंने निर्देशन की बारीकियाँ सीखी और शुरू हुआ एक सफल निर्देशक की पहचान बनाने का हसीन सफ़र।

साल 2011 में उनकी फिल्म आई तुम बिन। फिल्म की भावनात्मक कहानी और गीतों ने दर्शकों के दिलों दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। ये अनुभव सिन्हा की सफलता की पहली सीढ़ी थी। एक प्रतिभाशाली निर्देशक बॉलीवुड को मिल गया और इसके बाद एक के बाद एक फिल्मों का सफल निर्देशन आपने किया। आप एक सफल निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में स्थापित हो।

साल 2005 में एक एक्शन फिल्म आई, नाम था दस। बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके अलावा 2011 में सबसे चर्चित फिल्म रॉवन का निर्देशन आपने किया। लेकिन ये सफर यहीं पर रुका नहीं, बल्कि एक नया सफर शुरू हुआ, उनकी ऐसी फिल्मों के निर्माण का, निर्देशन का सफर, जिसने समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया।

0: साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म मुल्क, 2019 में आर्टिकल 15, 2020 में थप्पड़। श्रोताओं, ये सारी फिल्में ऐसी थी जिन्होंने समाज में एक सार्थक संदेश देने का प्रयास भी किया मनोरंजन के अलावा। अनुभव सिन्हा की रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों को समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान भी मिला। मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ जैसी फिल्मों ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि आलोचकों ने भी उनकी खूब सराहना की।
1: Better than our brother.

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आज के कलाकार निर्माता, निर्देशक, लेखक अनुभव सिन्हा, संवेदनशील और विचारोत्तेजक सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। सामाजिक सरोकारों को नई दृष्टि देने वाले एक ऐसे लेखक, निर्माता, निर्देशक का परिचय आज हमने आपसे कराया और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलिए कार्यक्रम में उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार निर्माता निर्देशक लेखक अनुभव सिन्हा। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी

0: हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सायं के 5:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के खास कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं कार्यक्रम विवरण में।

अब से बस कुछ ही मिनटों बाद यानी कि साय के 5:10 पर युवा श्रोताओं आप सबका मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं का अनुरोध मां आप सुनेंगे साय के 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में।

किसान भाइयों, आपके दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज कामता प्रसाद साहू से सुरुचि वर्मा करेंगी बातचीत। विषय होगा हमारी दिनचर्या और योग। समय रहेगा सायं के 7 बजे और सायं के 7:40 पर आप सबका मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा।

डॉक्टर नितिन कुमार प्रस्तुत करेंगे कविताएं कार्यक्रम काव्यांजलि में रात्रि के 8 बजे और रात्रि के 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 9:30 पर।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं आज रात्रि के 10 बजे और ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुनेंगे। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक नज़र डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर।

कल सवेरे आप सुनेंगे 7:10 पर चित्र रागिनी, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत चित्र रागिनी, कल सवेरे 7:10 पर। श्रोताओं, कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम शैल संगीत में विविध कलाकारों से कल सवेरे 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30। सवेरे के 10:30 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:45 पर रुहेलखंडी लोकगीत आप सुनेंगे उषा कोटनाला से कार्यक्रम लोक संगीत में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:10 हुए हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं की वाणी यानी युवानी, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा शर्मा।
1: और दोस्तों मैं हूं दिव्यज बहुगुणा। उम्मीद करते हैं कि हैप्पी एंड हेल्दी होंगे आप सभी और अपने वीकेंड को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल समाज की बल्कि देश के विकास की भी मजबूत नींव है।
1: दोस्तों हम बात कर रहे हैं सहकारिता से शक्ति की।
0: बिल्कुल दिव्य, सहकारिता यानी मिलजुल कर काम करना। जब लोग अपने संसाधनों, अनुभवों और मेहनत को एक साथ जोड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी वो आसानी से सामना कर लेते हैं।
1: सही कहा आपने कांचा। दोस्तों अकेला व्यक्ति जितना कर सकता है उससे कहीं अधिक सामूहिक प्रयास से सब संभव हो जाता है, और यही है सहकारिता की असली ताकत।
0: दोस्तों हमारे देश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
1: दोस्तों उदाहरण की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी समितियों ने लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आर्थिक मजबूती प्रदान की है। छोटे छोटे उत्पादकों को एक मंच पर लाकर उन्हें बाजार तक पहुंचाने का काम सहकारिता के माध्यम से संभव हुआ।
0: और दोस्तों यही कारण है कि आज सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी साधन बन चुकी है।
1: दोस्तों युवाओं के लिए भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। अगर युवा मिलकर स्टार्टअप, कृषि, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाओं या फिर अन्य क्षेत्रों में सहकारी मॉडल अपनाएं तो वो न केवल स्वयं आगे बढ़ सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: सहकारिता दोस्तों हमें टीम वर्क, विश्वास और जिम्मेदारी की सीख देती है। ये सिखाती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं सामूहिक भी हो सकती है।
1: और दोस्तों आज के कॉम्पिटिटिव दौर में जहां लोग अक्सर अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं सहकारिता हमें साथ चलने और साथ बढ़ने का संदेश देती है।
0: दोस्तों हमारे गांव में स्वयं सहायता समूहों की सफलता इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। महिलाओं ने मिलकर बचत, उत्पादन और स्वरोजगार के जरिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
1: और दोस्तों यही बदलाव समाज को मजबूत भी बनाता है। जब समुदाय मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूत बनता है।
0: तो आइए हम सभी सहयोग, सहभागिता और सामूहिक प्रयास की भावना को अपनाएं,
1: क्योंकि दोस्तों जब हाथ मिलते हैं तो शक्ति बढ़ती है, जब दिल जुड़ते हैं तो विकास का रास्ता भी खुलता है।
0: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं आपको हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आर्टिकल 15 से और जिसे आवाज दी है अरमान मलिक ने।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: दोस्तों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसका विषय है मॉडर्न लाइफस्टाइल में योग के फायदे। तो आइए सुनते हैं।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो,
4: आपका नाम और आप कहाँ से हमसे जुड़ रही हैं?
5: मेरा नाम भूमि है और मैं देहरादून से बात कर रही हूँ।
4: अच्छा भूमि, वैसे आप क्या करती हैं, जॉब कर रही हैं या फिर स्टूडेंट हैं?
5: अभी तो मैं

0: बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ मैं।
1: ग्रेट. अच्छा भूमि, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज जो देश भर में इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या आप जो योगा है कितना मतलब प्रैक्टिस करती हैं योगा?
0: हाँ मैं अपने योग तो मैं करती हूँ, योगा मैं करती हूँ, बट वीक में एक दो बार हो जाता है, डेली तो नहीं हो पाता है।
1: एटलीस्ट वीक में 1 से 2 बार भी करती हैं, वो बहुत अच्छी बात है. और वैसे भूमि, कई लोग कहते हैं कि उनके पास योग के लिए समय नहीं है, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मेरी तरफ से तो यही है कि कई लोग बोलते हैं कि उनके पास योगा करने का टाइम नहीं होता, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि हेल्थ के लिए तो टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है।
1: सही बात
0: अब
1: है.
0: योगा के लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, बस 5-10 मिनट भी, 15-20 मिनट भी बहुत होते हैं पूरे दिन में, आपको इससे बहुत फायदा मिल सकता है। योगा से बॉडी फिट रहती है, स्ट्रेस कम रहता है और माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। अगर लोग अपने मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया के लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर अपनी हेल्थ के लिए तो इतना कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: इसलिए
1: कहा आपने.
0: बहाने बनाने की जगह छोटी सी शुरुआत सबको करनी चाहिए, योगा अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। आज थोड़ा सा एफर्ट डालोगे अपने फ्यूचर के लिए तो लाइफ हेल्दी रहेगी और आप अच्छे से खुश भी रहोगे।
1: आपके कितने अच्छे विचार हैं भूमि. और प्रेजेंट में सफलता की कुंजी यही है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने आप को हेल्दी रखें. बाकी भूमि, आप जाते जाते अपना फेवरेट सॉन्ग हमें बताते जाइए कि आपको कौन सा सॉन्ग फेवरेट है, वो अपने शो में जरूर प्ले करेंगे.
0: आप मेरे लिए प्ले करो दम लगा के हरीसा का मोह मोह के धागे, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
1: ठीक है भूमि, हम जरूर आपके लिए प्ले करेंगे हमारे शो में. बाकी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूमि.

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: आपका नाम और आप कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं?
1: तुम कहाँ से बात कर रहे हो?
0: अच्छा शुभम, आप क्या करते हैं फिलहाल? जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं?
1: अभी फिलहाल जॉब करता हूँ।
0: तो शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में। और आज का जो हमारा विषय है वो योग से जुड़ता है, तो आप योगा को कितना प्रेफरेंस देते हैं शुभम?
1: मैम, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो योग मैं डेली करता हूँ ताकि मुझे स्ट्रेस वगैरह ना हो। तो एक बार मॉर्निंग जिम जाने से पहले मैं रोज योगा कर लेता हूँ, जैसे अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति।
0: ग्रेट। तो शुभम, क्या योग, आपको क्या लगता है कि जो योग है वो केवल बॉडी फिटनेस तक ही सीमित है या फिर उसके और भी बेनिफिट्स हैं हमारे लिए?
1: इसके और भी बेनिफिट्स हैं एक्चुअली मैम। मैम, योग सिर्फ बॉडी को फिट नहीं करता बल्कि ये हमारी पूरी बैलेंस करता है, जिससे हमें मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। तो आज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आजकल के यंग जनरेशन में की बात करूँ तो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं।
0: सही
1: तो
0: बोल
1: इस
0: रहे हैं।
1: टाइम पे हमें योग या मेडिटेशन करना चाहिए, इससे हमें से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो योग करने से सिर्फ लाइफ में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल चेंज होती है हमारी।
0: तो बहुत सुंदर विचार हैं आपके शुभम। और हमें अपना फेवरेट सॉन्ग आप बता दीजिए ताकि हम अपने शो में उसे प्ले कर सकें।
1: मैम, मेरा फेवरेट सॉन्ग है दिल का जो हाल है, देखते हैं मूवी का।
0: शुभम, हम ज़रूर आपका फेवरेट ट्रैक हमारे में प्ले करेंगे। और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम।
1: थैंक यू मैम।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा संडे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसका विषय था मॉडर्न लाइफस्टाइल में योग के फायदे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। दोस्तों, योग जिसने भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है।
1: और दोस्तों, हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है। दोस्तों, योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है।
0: और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके बाद 2015 में पहली बार पूरी दुनिया ने इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया।
1: और दोस्तों, 21 जून को चुनने का कारण भी खास है। ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म अयंतनाथ कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसका विशेष महत्व भी माना गया है।
0: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अक्सर तनाव, चिंता जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में योग एक प्रभावी समाधान बनकर हमारे सामने आता है।
1: सही कहा आपने। दोस्तों, रेगुलर योगा प्रैक्टिस से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, फोकस इंप्रूव होता है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
0: और यही कारण है कि आज स्कूल

0: तो कॉलेजेस और कार्यस्थलों पर भी योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई युवा अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से करते हैं।
1: दोस्तों, योग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बस सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है।
0: और हाँ, योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, इसमें प्राणायाम, ध्यान और पॉजिटिव लाइफस्टाइल भी शामिल है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है।
1: दोस्तों, विश्व योग दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही जीवन की असली पूंजी है।
0: तो क्यों ना हम सभी आज ये संकल्प लें कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट योग के लिए हम जरूर निकालेंगे।
1: क्योंकि दोस्तों, जब हम सभी फिट होंगे तभी तो मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में सुनते हैं गीत जो कि लिया गया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, और जिसे आवाज दी है विशाल ददलानी ने।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उस यात्रा की जिसने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जन कल्याण की दिशा में कई बड़े बदलावों का दावा किया है।
4: दोस्तों, 26 मई 2014 से शुरू हुई ये यात्रा आज 12 साल पूरे कर चुकी है और इस दौरान सरकार का मूल मंत्र रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
3: दोस्तों, अगर जन कल्याण की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों के को पक्के घर उपलब्ध कराने का दावा किया है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है।
4: वहीं डिजिटल इंडिया भी इस दौर की बड़ी पहचान बना। दोस्तों, UPI ने डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदल दी। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल लेन देन आम हो चुका है। जनधन खाते, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT और आधार आधारित सेवाओं ने सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का रास्ता भी मजबूत किया है।
3: और इन 12 सालों में बुनियादी ढांचे पर भी विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे, नए हवाई अड्डे, मेट्रो नेटवर्क और ग्रामीण सड़कों के विस्तार जैसे कई प्रोजेक्ट्स इस अवधि में तेजी से आगे बढ़े। सरकार का कहना है कि इससे देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलती है।
4: साथ ही साथ दोस्तों, कई बड़े नीतिगत फैसले भी चर्चा में रहे। GST लागू हुआ, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, 3 तलाक पर कानून बना, महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ और मेक इन इंडिया तथा PLI जैसी योजनाओं के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई।
3: दोस्तों, शहर सरकार की तरह इस कार्यकाल पर सवाल भी उठे। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, सामाजिक मुद्दों और कुछ आर्थिक फैसलों को लेकर लगातार सरकार की आलोचना की। वहीं सरकार का कहना है कि उसने चुनौतियों के बीच भी विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है।
4: दोस्तों, 12 वर्षों की इस यात्रा का मूल्यांकन अलग अलग नजरियों से किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस दौरान भारत ने डिजिटल परिवर्तन, आधारभूत ढांचे और कई कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं। और दोस्तों, इसी तरफ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो कि लिया गया है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने।

0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा जरूर बताइएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, और हमारा पिन कोड है 248001।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com, और साथ ही आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए हमें यानी दिविज
0: और आकांक्षा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:44:52 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत का सभी सुन दोनों थे मनोज भट्टाई छोड़ बटे सेवा सवाली नमस्कार
1: और दगड़ माँ ज्योति जोशी की तरफ बटे रहे नमस्कार पहला प्रणाम
0: आज ठीक हुई हूँ है ना
1: बिल्कुल
0: कुमो वेरगढ़ वाली इकट्ठा है
1: बिल्कुल
0: तो मैं अनमोनो चौकू आज सुबह बटे कार छे योग
1: किला ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छू तो वी के आप सब श्रोताओं को हमारे तरफ बटी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं
0: मैं तो अनमोनो चौकू कि योग एक दिन ना रोज करना चाहूँ वहाँ से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहते है ना और एक ऊर्जा जान शरीर है ना
1: बिल्कुल
0: आदिम जो चुस्ती फुर्ती एक शरीर में रहें
1: बिल्कुल और अचाल का खान पीन और अचाल का बखत देख बेर तो अगर स्वस्थ रूण चू निरोगी रूण चू तो वीक लीजिए योग और व्यायाम को अपन दैनिक जीवन में हमको शामिल जरूर करना चाहें
0: किले की अब घर फुंड पुगणो काम तो रह नहीं गए ना आज का बैठला घर हम काम काज भंडी कर दी कर दे छी पर थोड़ा कम कर दी ना पहल जुले कम हो गया तो पहल जो शरीर मेहनत खूब ऊंच है खेती पाती ऊंच है तो आदमा के व्यायाम योग है ना कसरत सब कुछ हो जान छे
1: तब तो वो वक्त तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती किले के काम ही तो भेजा छी नाते भर बटी ब्याह तले ना
0: तो ये बात तो हम आज इधर किले की आज योग दिवस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मनेणु छे लेकिन आज एक दिन और छे आज एक दिन छे एतवार और आज कार्यक्रम हूँ आपका अनुरोध हुआ
1: बिल्कुल श्रोताओं और योग कार्यक्रम हमारे 6:50 ताले चलल और आप थे जो ले अपन पसंद का आप गीत सुनना चाचा बस वो गीत हमारे स्टूडियो में मौजूद हों चाहे तो वीक लीजिए आप हमते झटपट ईमेल कर सकता तो झटपट एक बार कलम पकड़ कर हमारा ईमेल का पता नोट कर लियो कार्यक्रम का बीच में आपकी चिट्ठी अगर हम तले पूछ जाली तो हम आपकी पसंद का गीत आपको सुने सकनूँ तो हमारे ईमेल का पता छू चिट्ठी ग्राम जगत एट द रेट gmail.com
0: और जब तक हमारा सुन दरा ई धैते सुन दी और हम खुने की अपना पसंद का गीत का फरमाइश लेके कन भेज दी तब तक हम सुन दो अपन सुन दो थे एक अपनी पसंद को गीत
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओ, भरत गुसाई और दगड़ियों का सुरमा, अल्ले हमूल सुनो सुंदर सा गढ़वाली गीत। और आशा करनो कि आप थे यो गीत भल लागनल।
1: और आपसे कंप्यूटर तो देखना चाहूँ, यहाँ पर कुछ चिट्ठी आई छे।
0: बिल्कुल, हमारे पास एक चिट्ठी आ रहा है।
1: अच्छा, मतलब कि सुन दो हमारे दह सुने ली।
0: हो बिल्कुल। और यो चिट्ठी आ रहा है, लिखना चाहन की मैं देवेंद्र सिंह रावत, ग्राम भानस, जिला रुद्रप्रयाग, हाल निवासी, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला, निकट जॉली ग्रांट, जिला देहरादून। अनुरोध करनू कि आप मिकू रिखा उन्यालक जी की आवाज में मेरी सौझड़िया बैक गीत सुने दिया।
1: तो हम कोशिश करना, अगर हम थे ये गीत मिल दो तो हम जरूर सुनना है ना।
0: बिल्कुल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
5: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
6: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओं, रह बारे थे पहली हमूल सुनो सुंदर सा गढ़वाली गीत रेखा उनियाल का स्वर्मा और जय का अनुरोध कर राखी देवेंद्र सिंह रावत जील।
8: और ये जो रविवार होंगी ना, ये बहुत जरूरी होंगी। जन अभी आप रविवार हम भी सुने सुन कि टू व्हीलर यानी कि दो पहिया वाहन हम हेलमेट पहनना चाहिए और चार पहियों में बेल्ट लगाना चाहिए। तो आजकल आप देखना वेला ना यात्रा को सीजन भी चलना चाहिए और उत्तराखंड का सुंदर से कि तमाम ताल बटे जो लोग हैं घूमने खुने की ऊँ थे भी और हम जो यख रहें हम भी अब थे भी बना चाहूँ कि हम थे भी यू ध्यान जरूर रखना चाहना चाहिए है ना। यातायात नियम पालन करना चाहना चाहिए। आप सुनना वेला यात्रा में लोग जाना चाहिए और दौड़ाना चाहिए गाड़ियों थे है ना। वहाँ से क्यों कि भाई अब थे भी चोट आ सकत कभी गाड़ी लवन जान है ना और कभी जो आना जाना लोग उफर लग जाते तो ये दुर्घटना नहीं हुई अगर हम जरा नियमों पर ध्यान दूला।
7: बिल्कुल श्रोताओं, और कह ले आप जाचा आप अपन घर बटी भ्यार निकल छा तो सड़क की जो नियम छन उनर पालन जरूर करिया। हेलमेट जरूर पहर भी जाए अपन जो स्पीड छू को कंट्रोल में और जो यात्रा में उड़ वाल हमारे यात्री छन तो वो जो बाटघाट छन उनर पत्त कर बेर मौसम की पूरी जानकारी लिबेर तबे घर बटी निकलिया। और कुनी ना कि जो पहाड़ का जो ड्राइवर होनी वो कह ले गाड़ी चले सकनी और जो प्लेन्स का ड्राइवर होनी तो उनको थोड़ा पहाड़ में गाड़ी चलून में थोड़ा दिक्कत है ना मनोज जी।
8: लेकिन होंगे ना कि सब अब थे हम समझ दो कि हम कखी भी गाड़ी चला सको है ना। तो जरा से हम जो प्लेन हम गाड़ी चला दी ऊँ थे अभ्यास नहीं हूं ना तो जरा देखभाल की चटक चितोल सतर्क हुए कि चलाना चाहिए।
7: बिल्कुल, और पहाड़ों में तो अगिल मोड़ पे के हो जाल के पता नहीं हूं और अचाल तक कसी कसी दुर्घटनाएं सुनने को मिलना चाहिए तो बड़ा मन बड़ा खराब है जाइए सुन बेर ना।
8: तो आप जरा देख लो से कंप्यूटर थे सब कोई हैंक चिट्ठी भी आई और एक दा फिर दे लगा दो अपन सब भी सुन दो थे।
7: बिल्कुल श्रोताओ, हमारे यो कार्यक्रम 6:50 तक चलल तो आपको जो ले अपन पसंद का गीत सुनन चाचा तो वीक लीजिए आप झटपट हमको ईमेल कर सकता। जैक लीजिए हमारा पता छू चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
8: आप पढ़ लो से चिट्ठी दई
7: हो अब चिट्ठी भेज रहा की हमको VKS कार्की सीनियर सिटीजन नियमित श्रोता छनियो और डिफेंस कॉलोनी देहरादून बट्टी और इनुल अनुरोध कर रखो कि शांति पिंजोला जी का गाय कोई गीत मेको सुने दियो
8: कोई भी गीत इनुल हमारे काम आसान कर दिया।
7: बिल्कुल,
8: जो भी श्रोता सुन दो हमारी लगती ना कि कोई भी गीत वहाँ से क्यों उनकी हम तो जरा सरलता बजाना
7: आसानी भेजा तो आवा श्रोताओ सुन लो यो गीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: The all-new Nissan Revive अब CNG में
4: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेवाइड CNG के साथ 7 सीटर, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
3: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
5: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: रविवारों का दगड़ श्रोताओ, विजय कार्की जी का अनुरोध मा हमूल सुनो सुंदर सा गढ़वाली गीत शांति बिंजोला और दगड़ियों का स्वरमा।
8: और अगर कोई भी सुंदर हो हमर दगड़ करना चाहो ये कार्यक्रम मा, है ना, अपन पसंद का मन पसंद गीत अब भी चटचटाक सुनना चाहो तो वहाँ हम क्या करना जरा बताओ दो।
7: बिल्कुल, हमको आप ईमेल कर सकता और हमारा पता आप एक बार फिर से नोट कर लियो, chitti@gmail.com। और मनोज जी, अल्ले अल्ले हमारे पास एक चिट्ठी आ रहे और ये चिट्ठी थोड़ा मेको अटपटी लग रहे
8: पेड़ो तो सही।
7: यो चिट्ठी हमको भेज रहा की पीताम्बर सिंह चौहान और जाकन देहरादून बटी और इनूल लिख रखो की सबों को नमस्कार। और गोरु माँ ग्वालिन मैं झंडू विदेश मैं ना राई बिचारी चैन, यो गण जो छू द्वि आवाजों में छू पर उनको गायकों का नाम याद है।
8: चौहान जी आप हूं भी नमस्कार, आपल चिट्ठी ब्याज हमारे दगुड़कार यहाँ कुने की, लेकिन आपल हमते दुविधा में डाल दे कि लेकिन अब कतका साल होगी है ना आकाशवाणी थे और यख इतका गीतांग छी और उनका कतका गीत वाला आप सोच सकती तो यन जो गीत का बोल छी यहाँ से खुजानू हमते बहुत देर भे जानू और यन भी उनकी कार्यक्रम टाइम निकल जाला अगर ये थे हम छटनारोला उतका बड़ी लाइब्रेरी में तो अगर गीतांग नाम हों तो हम कोशिश करता कि हम इतने छाट लिंदा ये गीत थे ढूंढ लिंदा कि लेकिन यख जो लाइब्रेरी छी वख गीतों का गीतांग का नाम से गीत रंदी ना यन खुजान बड़े मुश्किल से तो आप अगली बार या अभी आप हैंक चिट्ठी लेके कन भेज सक दी जामा कि आप गीतांग का नाम लिख ला तो हम आपकी फरमाइश से पूरी करने की कोशिश कर ला।
7: बिल्कुल, और अभी तो मस्त टाइम छो हमारे कार्यक्रम में, तो कोई और गीत आप सुनना चाहछा ये के अलावा तो वो आप हमते भेज सकछा, ईमेल कर बे झटपट। तो
8: जब तक है कि चिट्ठी आना तब तक हम जरा एक सुंदर से गीत सुना दो अपनी पसंद को अपना सुन दो थे।
7: बिल्कुल।

0: सुंदरों अभी आप सुनना चाह चंद्र सिंह राही का आवाज में सुंदर सी कड़ली गीत। और ज्योति जी आई
1: जी,
0: कोई चिट्ठी?
1: हो एक चिट्ठी हमारे पास आई है रे, और विनीता पांडे पर्यटन कॉलोनी पटेल नगर पट्टी लिखना छन की, हीरा सिंह राणा का स्वरमा आजकल हैरी जवाना गीत सुने दिया, कुमाऊनी गीत की फरमाइश इनूल हमते कर राखी।
0: बहुत सुंदर से बात,
1: बिल्कुल
0: तो हम तुरंत ये गीत है खुजन दो और अपने सुंदरों की फरमाइश पूरी कर दो।
1: बिल्कुल।

कछ जो भा भर मत हरे सब नर गाल का नंतिन कर भक्त हरे सब नर गाल का नंतिन कर भक्त हरे सब।

0: श्रोताओ, हीरा सिंह राणा का स्वरमा अल्ले हमूल सुनो सुंदर सा कुमाऊनी गीत और जय के अनुरोध कर रखी विनीता पांडे जी।
1: अब जरा फिर देख लो से कंप्यूटर तक कोई और चिट्ठी आई छे।
0: चिट्ठी तो आल तो नहीं आई रहे हमारे पास।
1: मेरे ख्याल से आज यो नेटवर्क का भी
0: हो
1: है ना
0: थोड़ा
1: कुछ प्रॉब्लम
0: कम
1: होनी
0: चल
1: चाहिए
0: रहा हो।
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो अभी जरा बगत छे तो हम अपन सुंदर होता सुन सुन दो अनीसा गुसाई का शर्मा एक सुंदर सी गड़ोली गीत।

0: सुनदनो अनिसा गुसाईको गाया गीता कि दगड अब बगत हुनुहुन्छ उत्तराखण्डका प्रादेशिक समाचारको। हम भेटौला आपको दगड है कि पालीमा आप सुना उत्तराखण्डका प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है।
2: Beautiful designs take time, लेकिन KYC update मिनटों में। KYC update अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। Registered email, registered mobile number, online banking,
1: आधार, OTP based eKYC से या फिर video KYC से, यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए,
3: जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योगेश धस्माना और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
6: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
5: आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जिलों में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून, चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चमोली और सीमांत क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
7: उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये

0: उन्हीं पूरे विश्व को संदेश थे, यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देव हूँ, उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है, मन की आत्मा की शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेना के जवानों के साथ एक वृक्ष योग के नाम अभियान के आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रतनपुर, ग्रास्टनगंज, मालवीय उद्यान और निम्बूचौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम है और स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और योग साधक मौजूद रहे।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबो और पैठाणी क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने संस्कृत विद्यालय ओड़ली नांदा में लगभग 34 लाख रूपये की लागत से निर्मित नव भवन का लोकार्पण, जबकि विकासखंड थलीसैण के ग्राम पल्ली में लगभग 55 लाख रूपये की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उप केन्द्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चमोली जिले में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक और पहल की गई है। मंडल घाटी CLF के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिलांस भोजनालय का आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तक पहुंचाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने जिले के प्रमुख यात्रा मार्गों पर ऐसे और सामुदायिक भोजनालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। हरिद्वार में सरकार की जन कल्याणकारी व विकास परक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न नगर निकायों और विकास खंडों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में लोगों को भारी भागीदारी देखने को मिली तथा प्राप्त अधिकांश शिकायतों और

0: पंजीकरण 20 जून से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि आगामी 4 जुलाई निर्धारित है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई। वहीं गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में नए शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए 3 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें बीसीए, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एमटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं। संस्थान के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं विशेषज्ञता आधारित तकनीकी अध्ययन के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो। इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक दा फिर स्वागत सभी सुनदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत में। मिछो मनोज भट्ट
6: और दगड़ मां मिछू ज्योति जोशी।
5: ज्योति जी, जरा देख लो से कंप्यूटर पर कुछ आई छे से
6: चिट्ठी हमारे पास।
5: तो दौड़ दौड़ के पढ़ो।
6: बिल्कुल, यो चिट्ठी हमारे पास है रे पीताम्बर सिंह चौहान जाखन देहरादून बटी और अल्लाह इन्हें एक चिट्ठी और।
5: अच्छा, जो उन्होंने गंगदोलू में डाल दिया था ना।
6: बिल्कुल। तो अब की बार इन्होंने लिख रखो की द्वारिका प्रसाद की आवाज में एक धार बखरा यो गीत सुने दिया।
5: तो यू गीत हम खुजा छे जे, पर यू गीत हमते मिल नहीं, लेकिन द्वारिका प्रसाद जी की आवाज में ही हम उते सुना दिनो एक हैंकू गीत।

0: सुन रहा हूँ अभी, आप सुनना चाहे द्वारका प्रसाद का आवाज़ में सुंदर सी गढ़ली गीत। और ज्योति जी फिर
1: जी
0: देख लो से डब्बा पर कुछ आई छे चिट्ठी पत्री।
1: बिल्कुल, एक
0: डब्बा मतलब
1: चिट्ठी
0: समझना था ना, ओ लेटर बॉक्स।
1: एक चिट्ठी और हमारे पास आ रहा है, और यू छन मंजू रावत चंद्रानगर 107 चंद्रानगर देहरादून बटी लिखना छन कि नमस्कार ग्राम जगत प्रस्तुत करण वालों को, मंजू सुंदरियाल की आवाज में एक भलो भल गीत सुने दिया।
0: भलो भल गीत मतलब कोई भी गीत
1: हो, कोई लगी गीत। तो बिल्कुल मंजू जी, आपकी हम आपकी अनुरोध जरूर पूरी करो। दगर में पीएस चौहान जी के लिए हम थे अनुरोध कर रखो योगी तक ले।
0: तो हम अपन सुन दो अनुरोध है पूरा कर दें।

0: श्रोता, मंजू सुंदरियाल का गई गीत का दगड़ी हमारा आज का योग राम जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की मी ज्योति जोशी
1: और मनोज भट्टदेवा अनुमति
0: नमस्कार।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 6:50 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत हैं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं अंजलि भट्ट। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र को नेतृत्व करी। बोली, योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दू छे। राज्य में पहाड़ बटेन मैदान तक हजारों लोगों सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन को संदेश देनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन, प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनौन की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तय दोहरे। अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना का 3 पोत राष्ट्र तय समर्पित करें। बोली, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बनौन का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन। अब समाचार विस्तार बटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रमुख कार्यक्रम को नेतृत्व करी। ये दौरान प्रधानमंत्री बोली कि योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दूचे।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहाड़ बटिन मैदान तक सभी जिलों में उत्साह और उमंग का दगड़ी मनेगे। राजधानी देहरादून, चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारधाम अर उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चमोली और सीमांत क्षेत्रों में हजारों लोगों सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन को संदेश देने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन चंपावत जिला का बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोखू दगड़ी योग अभ्यास केरी। उन योग तय दैनिक जीवन को हिस्सा बनौन और युवाओं से नशा से दूर रहन को आह्वान करी। श्री धामीन बोली कि राज्य सरकार उत्तराखंड तय योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी का रूप में विकसित कन का खातिर प्रतिबद्ध छे।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। वो भूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है, मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
1: ये अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेना का जवानों का दगड़ी एक वृक्ष योग के नाम अभियान में आम को पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण को संदेश देने। वकी विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषणन कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग लेने। उन रतनपुर मालवीय उद्यान और नींबूचौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग केरी। उन बोली कि योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलन को सशक्त माध्यम छे और स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण में ये की महत्वपूर्ण भूमिका छे।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणे आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना का 3 पोत INS दूनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्रतः समर्पित करी। ये अवसर पर उन बोली कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच का दगड़ी अग्नि बढ़नु ची। प्रधानमंत्री बोली कि केंद्र सरकार हाल का वर्षों में कई नीतिगत सुधार करें और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री बोली कि रक्षा उत्पादन का दगड़ी रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुए। नौसेना का अनुसार यूं तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को उपयोग किए गए और निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को योगदान रहे। बागेश्वर में 15 वर्ष बाद आयोजित बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता चिकित्सीय एवं जन जागरूकता शिविर में जनसैलाब उमड़ी। पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में आयोजित विशाल शिविर में जिला का विभिन्न विभागों एक ही छत का मोड़ी आम जनता तय सरकारी योजनाओं की जानकारी दियोण का दगड़ी उनकी समस्याओं को मौका पर समाधान केरी। राज्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार मणि बताया कि शिविर में जिला प्रशासन पुलिस वन स्वास्थ्य कृषि समाज कल्याण पशुपालन जिला पूर्ति ग्राम्य विकास सहित अनेक विभागों का स्टॉल लगे।
5: लगभग 15 वर्षों के बाद बागेश्वर जिले में पहला विधिक शिविर है मल्टीपर्पज कैंप और ये डॉन और नालसा की दो स्कीम है, डॉन और जागृति। डॉन जो है नशा विरोधी स्कीम है, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए, और जागृति कानून के प्रचार प्रसार से संबंधित है और लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने की से संबंधित है। इन दो स्कीम पे आधारित कैंप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर लगाया गया।
1: शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रक्त जांच और दवा वितरण का दगड़ी दिव्यांगत प्रमाण पत्र बने तथा समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का सहयोग से दिव्यांग जनों तय व्हील चेयर वैसाखी श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित करें। कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावतन आज पौड़ी गढ़वाल जिला का पाबो और पैठाणी क्षेत्र में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं को शिलान्यास एवं लोकार्पण केरी। उन संस्कृत विद्यालय ओडली नांदा में लगभग 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित नव भवन को लोकार्पण करी, जबकि विकास खंड थैलीसैंण का ग्रामपल्ली में लगभग 55 लाख रुपए की लागत से बनिया स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूमि पूजन एवं शिलान्यास करी। ये अवसर पर उन बोली कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं तय सुदृढ़ कर और गांवों तय विकास की मुख्य धारा बटिन जोड़ने का खातिर निरंतर कार्य करनी चाहिए। चमोली जिला में ग्रामीण महिलाओं तय स्वरोजगार बटिन जोड़ की दिशा में एक और पहल की गई। मंडल घाटी CLF का स्वयं सहायता समूह द्वारा

0: संचालित हिलांस भोजनालय को आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टन शुभारंभ करी। ये अवसर पर सांसद महेंद्र भट्टन बोली कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों तय तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों तक पहुँचे कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तय मजबूत बनाए जा सकदू। उन जिला का प्रमुख यात्रा मार्गों पर इन और सामुदायिक भोजनालय स्थापित करने का निर्देश देने। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना का तहत स्वयं सहायता समूह तय स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाना छे, जिससे उनकी आय बढ़ोन और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलने छे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्र को नेतृत्व करी। बोली, योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दूची। राज्य में पहाड़ बटेन मैदान तक हजारों लोग हुन सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन को संदेश दीनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनोन की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता धरे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना का 3 पोत राष्ट्रतः समर्पित करें। बोली, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ोन का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को योग समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 7 बजे और ये समय होता है हमारे किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका भैया विकास चमोली। तो कैसे हैं साथियों आप? बिल्कुल भाई, आज के दिन की बात करें तो आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं योग दिवस। जी हाँ, आज का दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, योग के महत्व को समझें, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई है, और इसके कारण कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी चपेट में हम आ जाते हैं। तो अगर हमारी दिनचर्या ही सही होगी, योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सब के साथ हमारे दिन की शुरुआत होगी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य देन है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को संतुलित करने का एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। आज पूरी दुनिया साथियों योग के महत्व को स्वीकार कर रही है, और करोड़ों लोग इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो दिन की शुरुआत में ही अगर हम योग, ध्यान, प्राणायाम इनको करते हैं तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है साथियों, उनको भी हम ये अमूल्य धरोहर सौंप कर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने साथियों आज दुनिया भर के सामने योगासन किए और देशवासियों को ये संदेश भी दिया कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए योग। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारी दिनचर्या और योग के विषय पर हम आपके लिए एक भेंटवार्ता भी लेकर आए हैं डॉक्टर कामता प्रसाद साहू से, और आपसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी सुरुचि वर्मा। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कमता प्रसाद साहू, जो कि योगा प्रोफेसर हैं। कमता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, तो बताइए सबसे पहले योग क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि द्वारा जीने की यह एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य को प्राप्त करके

0: अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो चलन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश के रूप में योग के ज्ञान विज्ञान को प्रवाहित किया, इसी तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उपदेश के माध्यम से जो हठ योग है, आसन प्राणायाम है, इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जो विधा है
1: जी,
0: उसको उन्होंने जन सामान्य के लिए प्रवाहित किया। और वही पद्धति आज गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इन योगियों के माध्यम से आज धीरे धीरे आज हमारे बीच में एकदम व्यवहारिक रूप में इसका जो प्रभाव है, उपयोगिता है, वो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए और अपनी आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं।
1: जी, बहुत ही प्राचीन समय से ये विद्या भारत में है। और जैसे आज के आधुनिक जीवन में जैसे लोग बहुत बिजी हैं, तो इस समय योग की कितनी आवश्यकता है, क्या कुछ कर सकते हैं योग की मदद से?
0: देखिए, जीवन में संघर्ष और व्यस्तता तो पहले भी थी
1: जी,
0: और आज भी है और आगे भी रहेगी।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
0: लेकिन ऐसी स्थिति में हम संतुलन अगर बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि आज भागम भाग लाइफ स्टाइल में आज हमारी दिनचर्या इस तरह से हो गई है कि हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं। रात्रिकालीन जो हमारी सोने का जो समय है वो 11-12 बजे के समय हो गया है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें हम जरूर सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी उठने की आदत है 9 बजे के समय में है, तो उसको धीरे धीरे धीरे हम 8, 7, 6 और कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले तो हम उठ ही जाएं।
1: जी बिल्कुल।
0: अब उठने के बाद हम सोचते हैं तो करें तो क्या करें,
1: जी,
0: तो अब वो जो हम करते हैं ना, बस वही यौगिक क्रियाएं हैं।
1: जी,
0: जैसे हम उषा पान करते हैं,
1: जी,
0: पानी पी करके जब हम ताड़ासन, तीरक ताड़ासन आसनों को जब हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर देते हैं,
1: जी,
0: तो हमारी सांस क्रिया बेहतर हो जाती है
1: जी,
0: और क्लिंजिंग क्रियाएं शुरू हो जाती हैं।
1: जी
0: और यही है हमारे स्वास्थ्य का आधार।
1: जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए तो योग बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए तो हम योग करते ही हैं, और ये भी है कि इस योग हमें मानसिक रूप से भी बहुत मदद करता है,
0: जी,
1: तो इस बात में आप थोड़ा इस प्रकाश डालें।
0: देखिए क्या है कि शरीर के जो सूक्ष्म रूप है वह
1: जी
0: मन है और मन का स्थूल रूप शरीर है, तो दोनों का अनुनासिक संबंध है। तो अगर मन में कोई समस्या आती है, जैसे तनाव है, चिंता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: शरीर के रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, तो उस पर प्रभाव पड़ने से फिर मन पर उसका फिर और गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर मन की समस्याओं को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा शरीर के तल पर अगर हम कुछ मूवमेंट करते हैं, आसन करते हैं, अपने खान पान को, दिनचर्या को ठीक करते हैं, तो तत्काल मन पर कमांड कर लेते हैं। और मन जो है वह एक ऐसी चिंतन की प्रक्रिया है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसी मन से ही प्रेरित होकर के, संकल्प विकल्प करके ही हम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारे कर्म भी गलत हो जाएंगे। इसलिए कर्म को थोड़ा सा यौगिक दृष्टि से ठीक ठाक करके
1: जी,
0: और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: क्या नियमित योग करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है? जैसे कई बीमारियां होती है, मधुमेह होती है, मोटापा, इसमें कब तक और कितने समय में हमें फर्क देखने को मिल सकता है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए
1: जी
0: क्या है कि ये जो मधुमेह, मोटापा, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
1: जी
0: यह आज के समय की जो दिनचर्या और रात्रिचर्या के दोष हैं। अगर इनको हम जिस तरह से ये हमारे अंदर में धीरे धीरे धीरे धीरे प्रवेश किए हैं, उसी तरह से इनको धीरे धीरे करके हम दूर भी कर सकते हैं। होता क्या है कि आज के समय में जो तनाव है
1: जी
0: वह एक स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तनाव 3 तरीके से है, जैसे एक है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। हम कहीं से इमोशनली स्टिमुलेट हो जाते हैं, खामियाजा शरीर को भुगतना पड़ता है। मेंटल लेवल पर जब हम कहीं पे काम करते करते थक जाते हैं, तो उसका भी खामियाजा शरीर को
1: बिल्कुल,
0: भुगतना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शरीर के तल पर जब हम थकते हैं ना, तो उसको हम आराम करके, लेट कर, सो कर, रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन जो मेंटली और इमोशनली जो हम टेंस होते हैं ना, तो उनका जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ भाव और विचारों की शुद्धता से ही संभव है। तो ऐसी स्थिति में योग हमें ना, जो इसका जो ज्ञान पक्ष है वो हमारे दृष्टिकोण को सुधारता है,
1: जी
0: और हमारे जो व्यवहार पक्ष है, क्रिया योग है, वो हमारे अपनी दिनचर्या को ठीक करने का काम करता है। कुछ शरीर पर आधारित योग हैं, जैसे आसन प्राणायाम, वो हमारे स्थूल शरीर में सक्रियता लाने का काम करते हैं। इस तरह से शरीर, मन, प्राण, इनको पकड़कर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, मोटापा है, इन सारे सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं।
1: जी, योग और व्यायाम में क्या अंतर है? कौन सा सभी के लिए, जैसे कई आयु वर्ग के लोग हैं जो व्यायाम नहीं कर सकते, तो क्या योग वो कर सकते हैं?
0: देखिए योग व्यायाम दोनों में निश्चित रूप से अंतर है। योग एक सजगता का नाम है जिसमें हमारी श्वासों पर भी हम ध्यान देते हैं, हर क्रियाओं की जो प्रभाव है उस प्रभाव को भी हम आत्मसात करते हैं। लेकिन व्यायाम क्या है कि इसमें पर्टिकुलर मसल्स को हम टेंस देते हैं या एक ही अभ्यास को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसमें जो हमारी जो ना तो हम मेंटल काउंटिंग कर पाते हैं ना श्वासों के रिदम को पकड़ पाते हैं। जैसे कि रनिंग है, हम दौड़ रहे हैं तो उसमें श्वास की गति जब कब बढ़ जाती है उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन योगाभ्यास में हम एक एक क्रियाओं में श्वासों के क्रम को बनाए रखते हैं, भाव को जोड़े रखते हैं, तो ये दोनों में इस तरह से अंतर है। और इसे हर व्यक्ति विशेष कर सकते हैं, जैसे युवा वर्ग हैं तो उनका अगर योग में मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहले व्यायाम से ही शुरुआत करना चाहिए ताकि उनके अंदर में सक्रियता आ जाए। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो योग के अनुसार से अवेयरनेस के साथ में जब करने लगेंगे तो वही फिर योग बन जाएगा।
1: बिल्कुल, योग बहुत प्रभावशाली है और हर उम्र के लोग ये कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल कर सकते हैं। असल में योग जो है किसी उम्र के मोहताज नहीं है।
1: जी
0: अक्सर छोटे बच्चे खेल खेल में वो कुछ कुछ कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, अगर आप हम बारीकी से देखें योग के क्रिया पक्ष को तो वो किसी न किसी रूप में योग को कर रहे हैं। तो उम्र का प्रभाव तो पड़ता ही है, बच्चे हैं तो वो संतुलन के आसन और उसको खेल खेल में हम उनको करा सकते हैं, अब वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, बुजुर्ग होते हैं तो शरीर की असक्तता है, डिजनरेशन की क्रियाएं हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए जो श्वासों की क्रियाएं हैं, जो हाथ के छोटे छोटे मूवमेंट हैं, जॉइंट्स मूवमेंट हैं, वो उनके लिए फिर वो सहायक अभ्यास बन जाता है।
1: जी कुछ सरल जो आसन होंगे वो लोग वो कर सकते हैं, तो क्या वो आसन रहेंगे, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें।
0: जी वो आसन जैसे कि जॉइंट्स मूवमेंट है, अगर हम सिंपल बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, पालथी मार के बैठे हैं, तो हम हाथों से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो हाथों में हमारी जो उंगलियों के मूवमेंट है, कलाई के मूवमेंट है, फिर धीरे धीरे एल्बो के मूवमेंट है, स्कंध के मूवमेंट है, ये इसमें कोई विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर हम कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठे बैठे ही शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह से पैर की मूवमेंट के लिए हम बैठे बैठे कुछ उंगलियों को मूवमेंट कर सकते हैं, घुटने के मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह योग के जो छोटे छोटे अभ्यास हैं उनके लिए बहुत सुंदर विधान है। थोड़ी सी इसके लिए किताबें अवेलेबल हैं, कहीं सर्च करने पर मिल जाती।
1: और योग करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता होगा, तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो सभी को ध्यान रखना चाहिए?
0: जी योग की क्रिया पक्ष के लिए तो सावधानियां बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी सिद्धांत की व्यवहार पक्ष होते हैं, तो व्यवहार में जैसे हठ योग में कहा गया है कि उस ब्रीदिंग है, अवेयरनेस है, सीक्वेंस है ना, एज लिमिटेशंस है, काउंटर पोज है, टाइमिंग है, और हमारी एम्प्टी स्टमक, पेट का भी खाली होना जरूरी है, हाथों का भी खाली होना जरूरी है, और क्लोथ्स कपड़े भी हमारे ढीले ढाले होने चाहिए, और ब्लैंकेट कहीं कंफर्टेबल फील कर सकें। तो ये सब सावधानियां हैं, हमारी श्वास क्रिया उम्र की ख्याल रखें, और अगर इस प्रकार की कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसमें हम लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उनकी सावधानियों को भी हमें ध्यान रखते हुए अभ्यास करना चाहिए।
1: और योग के साथ साथ खान पान भी आवश्यक है, तो खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए?
0: जी खान पान में व्यक्ति रोटी दाल चावल के सिवा क्या खाएगा, लेकिन कहते हैं कि अगर इसी को हम मात्रा में खाएं,
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे कहा गया है कि 100 में से 50% भोजन और 25% जल, 25% वायु को लेकर हम रखते हैं, तो इसे मिताहार कहते हैं।
1: अच्छा।
0: सात्विक आहार, मिताहार, रासिक आहार, तामसिक आहार, इस तरह से आहार के भेद हैं। तो मात्रा का ध्यान रखें, अपने हित में है कि नहीं उसको ध्यान दें, और ऋतु के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि ऋतु काल में गर्मी के समय में तरबूज, खीरा, ककड़ी इस तरह से सहज रूप से उपलब्ध होते हैं, तो ये इसको शामिल करना चाहिए। ठंड के समय की जो ऋतु काल की आहार अलग होते हैं, आहार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, संतुलित आहार। और जैसे प्रतिदिन अगर हम केवल 15 से 20 मिनट योग करते हैं तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा?
0: बहुत सुंदर, क्योंकि क्या है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खुद तो शुरुआत करें। अगर हम 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और नियमित रूप से करेंगे, नियमितता और निरंतरता ये जरूरी है। जैसे कि किसी दिन हम समय चुक भी गया,
1: जी बिल्कुल,
0: तो हम कोशिश करें कि उस टाइम विशेष में शाम को हम पूरा कर लें, और जिस समय विशेष में करते हैं उस समय, जैसे कि स्नान है, जिस समय हम नहाते हैं ना, तो उस समय हमें उसी समय नहाने का मन करता है।
1: बिल्कुल,
0: टाइम के निकलने के बाद में फिर नहाने का मन नहीं करता।
1: जी।
0: तो आज योगाभ्यास के प्रति जो उपेक्षा भाव है ना, वो टाइम के समय के चुकने के बाद में जब हम करते हैं तभी मन नहीं लग पाता। तो 15-20 दिन की जो प्रयास है वो तो बहुत बड़ी प्रयास है। अगर हम 5 मिनट से भी शुरुआत करते हैं ना, तो एक सप्ताह में उसको रिजल्ट को देख सकते हैं, मन लगने लगेगा और लंबे समय तक फिर उसको हम बड़ा बनाए रख सकते हैं।
1: तो जो लोग पहली बार योग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: जी, पहली बार योग की शुरुआत जो है अपनी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत, जैसे सुबह होसा पान करते हैं तो उसी में थोड़ा सा ताड़ासन, तीरक ताड़ासन को जोड़ना शुरू कर दें
1: जी।
0: और ये शुरुआत है। फिर स्नान करते ही हैं तो स्नान करके अक्सर घर में पूजा पाठ अगरबत्ती दिनचर्या करते हैं
1: जी।
0: तो उस दौरान थोड़ी देर के लिए
1: जी।
0: वो बैठ जाएं और बैठ करके

0: अपनी लंबी गहरी सांस ले लें और शुरुआत करें। फिर एकांत शांत आंखें बंद करके आग के विषयों को रोक लें, कोलाहल रहित वातावरण बनाते हुए कान के विषयों को रोक लें, तो ये बन जाता है प्रत्याहार।
1: जी
0: और अपने मन को ठहराने के लिए माला का भी प्रयोग कर सकते हैं या
1: जी
0: स्वाध्याय का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह ज्ञान योग है। तो इस तरह से प्रारंभिक शुरुआत कर सकते हैं।
1: तो अंत में जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता हैं कि उन्हें अपने स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए योग को कितना अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए?
0: जी, हमारे श्रोता बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि यह जो मैसेज है
1: जी
0: योग के बारे में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इसको जन क्रांति बना दिया है, और ऐसे स्थिति में योगा डे के दौरान हम शुरुआत करें, अगर हम लंबे समय से हमारे अभ्यास छूट गई है
1: जी
0: तो नए संकल्प से किसी विशेष दिन, तो जो 21 जून का जो दिन है वो, उसको हम आधार बनाएं और थोड़ा सही सही लेकिन अपने जीवन में उसके शुभारंभ करें। और अगर कहीं बीच में छूट जाता है लंबे समय के लिए तो
1: जी
0: किसी और अच्छे दिन, पर्व विशेष में, जो भी हमारे जन्मदिन के अवसर पर या विवाह दिवस के अवसर पर, एक नए संकल्प के साथ में
1: जी
0: हम शुरुआत करें। और ऐसा करेंगे तो अब इसमें हमें अपराध बोध भी नहीं होना चाहिए कि अभ्यास छूट गया,
1: बिल्कुल
0: लंबे समय से छूट गया है, तो हम
1: जी
0: फिर से शुरू कब करें? जब जागो तब सवेरा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: कभी भी आपका मन करे तो धीरे धीरे धीरे धीरे, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट आधार है,
1: जी
0: उसी दिन से ही हम शुरू करें और स्वस्थ शरीर में ही फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे,
1: जी
0: सुख में करे न कोई। जो
1: बिल्कुल
0: सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। केवल दुख के पल में ही हम ना करें
1: जी
0: बल्कि सुखद पल में भी हम इसको करते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया हमारे श्रोताओं को। तो डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतना अच्छा योग के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप कामता प्रसाद साहू से सुरुचि वर्मा की ये महत्वपूर्ण बातचीत सुन रहे थे जिसका विषय था हमारी दिनचर्या और योग। निश्चित तौर पे साथियों, योग मन और शरीर का संतुलन बनाने में कितना महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे आज हर कोई व्यक्ति इसको जान भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं बातचीत का लाभ हमारे सभी साथियों को जरूर मिलेगा। और चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में हम करते हैं आपका मनोरंजन और सुनते हैं एक गीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब
2: जागो, ग्राहक जागो।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और खेती किसानी की साथियों हम बात करें तो खरीफ की तैयारियां हमारे किसान साथी जोरों शोरों से कर रहे हैं, और क्योंकि आने वाले समय में कई सारी अनाज वाली महत्वपूर्ण फसलें जैसे धान है, इसकी हमने बिजाई करनी है, मक्का है, तमाम हमारे पास है। मोटे अनाज वाली फसलों में भी कई सारे समसामयिक कार्य हमें करने होते हैं, लेकिन साथियों इस समय ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो किसान हमारे नए बाग लगाना चाहते हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे साथियों बरसात आती है, उससे पहले हमारे किसान साथी गड्ढे खोदकर गड्ढों में खाद उर्वरक ये सब भरकर और बरसात के समय में अच्छी गुणवत्ता वाली पौध का रोपण करते हैं, तो क्योंकि तैयारी हमने अभी से करनी है। तो साथियों अगर आप भी गड्ढे खोद रहे हैं, नए बाग की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि रेखांकन बहुत ज़रूरी है साथियों। कितनी दूरी पर हमने वृक्ष लगाना है और किन के साथ किन वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में हमें अच्छे फल मिल सकें। दूसरा साथियों, अगर आप गड्ढे खोद रहे हैं तो गड्ढे खोदने के बाद कुछ दिन साथियों उन गड्ढों को आप खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने से जो भी उसके अंदर शत्रु कीट हैं या कई सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो धूप के संपर्क में आने से साथियों नष्ट हो जाते हैं, तो आप गड्ढे खोदने के बाद उनको खुला छोड़ दें। और हाँ, उसके बाद जो गड्ढे से मिट्टी निकली है उसमें आप अच्छे से खाद उर्वरक मिलाइए, और उस खाद उर्वरक को गड्ढे में भरने के बाद ही आप पौध का रोपण करें। जैसे खाद उर्वरक साथियों आप गड्ढों में भरेंगे, उतना ही तंदुरुस्त उतना ही स्वस्थ पौधा आपका होगा। साथ ही पौधा अगर आप लगा रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि पौध आपने कहाँ से ली है, पौध प्रमाणित है या नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान रखनी होती है। पौध का भी शोधन बहुत ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि प्रमाणित नर्सरी से आप पौध लें। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो हमारे किसानों को सहायता प्रदान करते हैं, उद्यान विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके सहयोग से भी साथियों आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पौध मिल सकती है, तो इनके संपर्क में आप आ सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों से आपको सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी प्रजाति अच्छी रहने वाली है ताकि भविष्य में साथियों आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। और कहा भी जाता है कि आने वाले समय में साथियों हमारे बच्चे हमें दे ना दें, लेकिन ये वृक्ष साथियों हमें ज़रूर देंगे। तो वृक्षारोपण अगर आप करेंगे, बाग आप लगाएंगे, तो आज आप इनको लगा रहे हैं, भविष्य में साथियों आपको ये बहुत कुछ देने वाले हैं। फलों के साथ शुद्ध हवा की हम बात करें, पर्यावरण की हम बात करें, हमारे चारों तरफ साथियों हरियाली अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर स्वस्थ वातावरण में हम जी पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी को भी साथियों ये अमूल्य धरोहर हम सौंप कर जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों के साथ अगर हम बागों का रोपण करते हैं तो अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। जिन फलों की साथियों बाजार में ज़्यादा मांग है उनको हमें चुनना चाहिए, उन प्रजातियों को हमें लगाना चाहिए जिनको ज़्यादा ढूंढा जाता है, जिनकी अच्छी कीमत हमारे किसानों को मिल सके। तो चलिए साथियों अब कार्यक्रम में हम करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक रागिणी।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: इसी के साथ साथियों, अब हमारा भी समय हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का। जाते जाते हम अपने किसान साथियों से जरूर कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें। आपके पत्रों का साथियों हमें इंतजार रहता है, और अब तो आप हमें सीधे मेल कर सकते हैं jagatkrishi@gmail.com पर, और अपने पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, भैया विकास को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों के साथ उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत हैं कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नुक्तागढ़ मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रक नेतृत्व करो। उन्होंने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य है लिबेर, शारीरिक स्वास्थ्य मार्ग ले प्रशस्त करूं। राज्य में पहाड़ है लिबेर भाबर तलक, हजारों लोगन सामूहिकों के अभ्यास कर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में योग एवं वेलनेस राजधानी बनक दिशा में राज्य सरकारक प्रतिबद्धता दोहरे। और प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप है बड़ी नौसेना 3 पोत राष्ट्र के समर्पित करी। उन्होंने को घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ने के लिए विशेष कदम उठाई जनई। अब समाचार विस्तार सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रमक नेतृत्व करो। यो बखत प्रधानमंत्री को कि योग मानसिक स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य मार्ग प्रशस्त करूं।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश में पहाड़ है लिबेर भाबर तलक सभ्य जिलन में उत्साह और अमंग दगड़ मनाई गो। राजधानी देहरादून, चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, चमोली और सीमांत क्षेत्रों में हजारों लोगन सामूहिकों का अभ्यास कर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिलक बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बहुत संख्या में आई लोगनक दगड़ योगाभ्यास करो। उन्हें योग के दैनिक जीवनक हिस्सा बनू और युवाओं धे नस है दूर रूणक ले आह्वान करो। श्री धामील को कि राज्य सरकार उत्तराखंड के योग और वेलनेसक वैश्विक राजधानी रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध छू।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश थे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग मन की आत्मा की शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
1: यह अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेनाओं जवानों दगड़ एक वृक्ष योग के नाम अभियान में आमक बोट लगाए बेर पर्यावरण संरक्षणक संदेश दे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषणल कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग ले। उन्हें रतनपुर, ग्रास्टनगंज, मालवीय उद्यान और नींबू चौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग करो। उन्हें कहो कि योग शरीर मन और आत्मा के संतुलित करणक सशक्त माध्यम छू। स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाजक निर्माण में ले एक भूमिका महत्वपूर्ण छू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना 3 पोत INS दूनागिरी संशोधक और अग्रे के राष्ट्र को समर्पित करो। ये अवसर पर उन्हें को कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोचक दगड़ अघिल बढ़नो। प्रधानमंत्री को कि केंद्र सरकार हाल वर्षन में कई नीतिगत सुधार करी छन और घरेलू निर्माण क्षमता के बढ़ुनक लीजिए विशेष कदम उठाई छन। प्रधानमंत्री को कि रक्षा उत्पादनक दगर दगर रक्षा निर्यात माले अभूतपूर्व वृद्धि भई छू।
2: भारत आज अप... अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: नौसेना अनुसार यो तीनों पोतों में 75% है ज्यादा स्वदेशी सामान उपयोग करीगो। निर्माण माले 200 है ज्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान रो। कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉ धन सिंह रावतल आज पौड़ी गढ़वाल जिलक पाबो और पैठाणी क्षेत्र में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करो। उलन संस्कृत विद्यालय ऊंडली नांदा में लगभग 34 लाख रुपए लागत है निर्मित नई भवनक लोकार्पण करो। वहीं दूहर तरफ विकासखंड थलीसैण ग्राम पल्ली में लगभग 55,50,000 रुपए लागत बढ़नी वाल स्वास्थ्य उपकेंद्र भूमि पूजन व शिलान्यास ले करो। यह अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़करण और गांव के विकास के लिए लगातार काम करने।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: चमोली जिले में ग्रामीण श्रेणियन के रोजगार स्वरोजगार हैं जोड़ने की दिशा में एक पहल करी गई। मंडल घाटी सीएलएफ स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिलांस भोजनालय आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टल शुभारंभ करो। यह अवसर पर सांसद महेंद्र भट्टल को कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों तक पूजे बेर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत बढ़ाई जा सकूं। उन्होंने जिलक प्रमुख यात्रा बाटन में यस और सामुदायिक भोजनालय बनाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी बताए कि ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारक अवसर दी जाने जैक वजल उनरी आय बढ़ूण और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलने। बक्सर में 15 साल बाद आयोजित बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता चिकित्सीय एवं जागरूकता शिविर में जन सैलाब उमड़ो। पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में आयोजित विशाल शिविर में जिलक विभिन्न विभागों एक के छतकताओं में आयबेर आम जनता के सरकारी योजनाओं की जानकारी दिनक दगर दगर उनर समस्याओं के मौक पर समाधान ले करो। राज्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार मणिल बताए कि शिविर में जिला प्रशासन पुलिस वन स्वास्थ्य शिक्षा कृषि समाज कल्याण पशुपालन जिला पूर्ति ग्राम विकासक दगड़ कई अन्य विभागों के स्टाल ले लगाई गई।
5: लगभग 15 वर्षों के बाद बागेश्वर जिले में ये पहला विधिक शिविर है मल्टीपर्पज कैंप और ये डॉन और नालसा की दो स्कीम है डॉन और जागृति। डॉन जो है नशा विरोधी स्कीम है नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए और जागृति कानून के प्रचार प्रसार से संबंधित है और लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने की से संबंधित है। इन दो स्कीम पे आधारित कैंप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर लगाया गया।

0: अनुसार BA LLB ऑनर्स व BBA LLB पाठ्यक्रमों में प्रवेश लीजी पंजीकरण 20 जून बटेक शुरू है गो। पंजीकरण अंतिम तिथि ऊन वाल 4 जुलाई निर्धारित छू। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल माध्यमक ले ऑनलाइन आवेदन कर सकनी। इच्छुक अभ्यर्थियों दें बखत में पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण करणक ले अपील करी गई छू। वहीं गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में नई शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए 3 नई पाठ्यक्रमों के लिए शुरुआत करी गई। यमें BCA MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और MTech कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल छन। संस्थान के अनुसार यो पाठ्यक्रमों के शुरू होने के वजह प्रदेशक विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता आधारित तकनीकी अध्ययन लीजिए राज्य है भैर जाने की जरूरत नहीं पड़ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्रक नेतृत्व करो। उन्होंने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करूं। राज्य में पहाड़ है लिबेर भाबर तलक हजारों लोगन सामूहिक योगाभ्यास कर बेर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील प्रदेश में योग एवं वेलनेस वैश्विक राजधानी बनने की दिशा में राज्य सरकारक प्रतिबद्धता के दोहरा। और प्रधानमंत्री कोलकाता में स्वदेशी रूपल निर्मित नौसेना 3 पोत राष्ट्र के समर्पित करी। उन्होंने कहा घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ने के लिए विशेष कदम उठाई जाने। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यही समाप्त हूं। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं अब समय हो गया है फिल्म संगीत का। और फिल्म संगीत में सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म आप आए बहार आई से किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के गीत और लक्ष्मी प्यारे का संगीत।
2: कैसा कैसा

फिल्म दो रास्ते से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अगला गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में, लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम 10 नंबरी।

यही है कार्यक्रम का अंतिम गीत और इसे लिया गया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मी प्यारे का।

0: फिल्म संगीत के बाद श्रोताओं, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि, जहां डॉक्टर नितिन कुमार कर रहे हैं काव्य पाठ।
1: प्रस्तुत है कुछ दो

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you.
2: सर डॉक्टर शर्मा, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
3: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो पिछले 12 वर्षों में जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000

0: economies. We
1: Absolutely.
0: are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: तो मिस्टर चनॉय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया।
2: सोनी जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं। तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है। अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे, और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चली नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
2: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था। जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजंस ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है। पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
1: जी,
2: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर्स, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपैरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
2: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
0: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है। और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी। तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
0: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग वही 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारा आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is Logistics Data Bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo. Or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So Sunil ji, you have talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. We import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. And the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
3: Yes.
2: And the third was that the when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Mm. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business.
3: Mm.
2: And particularly the first is you have computerized the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes

0: साबित किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के

0: विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डिजीलॉकर ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की

0: लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूज

0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है, क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं, और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी
3: रहमान बकलम खुद,
2: ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
4: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
4: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
4: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूं ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूं, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
4: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
4: फिर इस गाय ही को?
5: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
4: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
4: या अल्लाह।

0: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
1: अरे लाला छोड़ गया को, बगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खड़ा क्या सोचा, ला
0: तो नहीं गाय को रस्सी गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
1: पैसे दे रहे हैं।
0: अरे ये भी कुछ,
2: अरे क्या, मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ। बोल क्या इरादा है, मैं तुम चुप रहो, मेरे भगवान का दे रहा है बात।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है यार।
2: आइए आइए मुख्तार साहब, सलाम।
1: सलाम
3: सलाम
2: हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
1: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
1: हुजूर ये देखिए,
3: गर्दन भारी पुट्ठे
0: और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
1: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
0: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
0: हाँ हुजूर, एक बेला में

0: की नालिश नहीं करूंगा।
1: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
1: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
1: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
1: 180?
0: हाँ हाँ 180। कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
1: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
2: छोड़ मुझे। चल क्या बना आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता। चलता है, चल।
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
2: अरे अच्छा चल।
4: सरकार, रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर? 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
0: लाओ, रुपए कहाँ हैं?
3: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हूँ हुजूर, कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
0: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर। ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं हुजूर।
0: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
3: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
0: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा, पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
3: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
0: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
3: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
0: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा,
0: बेटा।
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: हाँ, उठो उठो, थोड़ा सा मेरी
1: अम्मा
0: चलिए।

0: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
1: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
0: अरे सुनो
1: जी,
0: जाते कहां हो?
1: सरकार
0: कैसे आए थे, क्या कुछ काम था?
1: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
0: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो
1: हुजूर? अम्मा।
0: क्या, तुम्हारी अम्मा?
1: वाह हुजूर, आज तीसरा दिन है।
0: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
1: हुजूर कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
0: कहो क्या बात है?
1: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा हान पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
0: ऐसा क्या करना चाहते हैं
1: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
0: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
1: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ हुजूर, जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
0: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
1: हुजूर? सरकार 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
0: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
1: सरकार,
0: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
1: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, कौड़ी कौड़ी।
0: यहाँ दस्तखत करो।
1: आपकी बहुत मेहरबानी है,
0: ये लो कलम।
1: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम
1: सलाम।
0: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
0: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
0: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
0: हाँ बोलो।
2: आपके लाला का कर्जा चुक जाएगा?
0: आपकी ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
0: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अबकी साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
0: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
0: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलियान में आती,
0: और खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
0: नहीं तो
2: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: ला काका ला। वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊँख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊँख है।
2: ये लो तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा।
3: पर मंडी में नया गुड़ पहुंचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
3: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
3: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी आया है।
3: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान? आपको मत छेड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
2: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ दे।
1: अरे मारे ऊख पर घर में तोड़ने का रे बाहर होगा। आग यही तो बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या कर रहे हो।
2: अरे अशोक
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली
0: है? जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह रूप जल रही है।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहाँ छुप जाओ, कहाँ छुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: गा। अरे चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्ही कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर, दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान।

0: समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
1: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
0: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
1: सरकार?
0: हाँ रहमान हाँ।
1: नहीं नहीं सरकार नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
0: कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
1: पर हुजूर मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
0: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
1: नहीं हुजूर नहीं।
0: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
1: हुजूर
0: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
1: सरकार
0: और रहमान तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
1: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
0: नहीं रहमान नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
1: नहीं हुजूर गुलाम।
0: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
1: सरकार खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत।

0: जी धन, अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:58:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं कुछ संदेश।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित मणिलाल नाग द्वारा सितार वादन राग पुरिया कल्याण में।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है शास्त्रीय संगीत का। अभी आप सुन रहे थे पंडित मणिलाल नाग द्वारा सितार वादन राग पुरिया कल्याण में। उनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शंका चटर्जी। अब सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन राग मियाँ की मल्हार में। तबले पर उनके साथ हैं उस्ताद साबिर खान।

0: शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: मैं आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण